0: hottest trends,
1: the smartest brand.
2: Welcome back. Let's get you the latest from Maharashtra. Less than 48 hours since that huddle that took place at the residence of Uddhav Thackeray at Matoshri with the UPT MPs there of the Shiv Sena faction. Operation Tiger Politics is yet again back in focus. We have rival Shinde faction making tall defection claims. And then despite the show of strength, there's the Shiv Sena MLC from their side suggesting that 7 of the 9 Shiv Sena UPT MPs could rebel against the party ahead of that winter session. And this comes after reports suggesting that Uddhav Thackeray during that huddle reportedly said, what is the point of forcibly holding back someone who really wants to leave? Adding that the rebels should be let go. Meanwhile, it's Shiv Sena MLC reiterating that Operation Tiger is far from over and that the names would come out in open, and that is going to be coming out as early as 15 days time from now, with many MLAs also to follow suit.
3: देखिए उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसमें अंदरूनी तौर पर भयंकर रूप से झगड़ा चल रहा है। उनके जो विधायक और सांसद है उनका विश्वास नेतृत्व पर नहीं रहा। उनका आरोप है कि हमारा नेतृत्व बहुत अहंकारी हो गया है, हमारा नेतृत्व घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम करता है, हमारा नेतृत्व, उनका यह आरोप है कि कैडर से कोई संवाद नहीं रखता है। उनके जो विधायक और सांसद है वो बोलते हैं कि हमसे हमारा लीडरशिप मिलता ही नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, और इस वजह से पूरा का पूरा जो कैडर है वो इस समय नेतृत्व से नाराज है।
4: देखिए ऑपरेशन उल्फ कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदी बात वो हमेशा करते हैं, संसदीय भाषा में बात करते हैं। ये तो यहाँ पे सब टाइगर्स है, इसलिए वापस जीत के आपके लोग क्यों नहीं जीत के आए? बाला साहब के विचारों पे जो चलते हैं उनको टाइगर बोला जाता है, तो हम लोग बाला साहब के विचारों पे चले, ना कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी जुड़े। और कांग्रेस के साथ जुड़ना बाला साहब को कभी भी मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं अपना पक्ष बर्खास्त कर दूंगा जब ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे कांग्रेस के साथ ज्वाइन होना पड़े। तो ये बाला साहब के विचार थे, और वो विचारों के खिलाफ जो भी कृति हुई है वो लोगों ने अप्रूव नहीं किया है।
5: We are not getting into any speculation. There is no Operation Tiger. There is only Operation Progress. And we work in that direction to work for the people of Maharashtra. Our leader, Eknathji Shinde, is the most popular mass leader. And you see Paksh Pravesh every single day. We are not here to divide any party or destroy any party or poach from any party. We are here to do our job, which is Operation Progress.
2: And with that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more. Stay.

0: talent that there is in across India Inc.
1: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth, but also on bringing good governance.
2: Be part of the jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
3: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
4: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
5: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
6: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. Coming soon.
7: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
8: Really?
7: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
9: Welcome back. Let's get you the latest when it comes to West Bengal after the merger of the rebel TMC MPs with NCPI. Now, legal tussle is for the real tag of the TMC. That could really be coming up next in the state of West Bengal. One of the senior most rebel MPs, Sudeep, has laid out the next steps, hinting that in July they will stake claim as far as the party's name and the party's symbol is concerned. And that court will settle the matter. But the rebel camp appears to be really divided in the house. During deliberations held at Bhupinder Yadav's residence, sources are saying that one section wanted a clean break when it comes to the party from Mamata Banerjee's party, with no claim over the name or the symbol. But then the other camp is in favour of staking claim to the Trinamool Congress's legacy. But when it comes to the rebel MLAs, they say they have no plans to merge with any other political party.
10: जहाँ तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं है. हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्च हुए हैं. ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं है.
11: टीएमसी बैनर में ही आप लोग आगे बढ़ेंगे?
10: ये तो बार बार हम लोग बोल चुके हैं, 80 में से 85 लोग, ये लोग एक साथ है, एकजुट है. ये कलेक्टिव क्या करेगा, ये बार बार हम लोग इसका दौरा किया है. मैं फिर और एक बार इसका दौरा नहीं करना चाहूंगा. हमारा स्टैंड लाउड एंड क्लियर है.
12: देखिए, इसमें वो लोग टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है. क्योंकि इतना प्रतिश्रुति दिए है और इतना सपना है बंगाल को आगे लेके जाने का, वो बहुत बड़ा काम है. वो कान में ही हम लोग जुटे हुए हैं.
9: More news from West Bengal, and it's the Enforcement Directorate, the ED's probe into the Bengal teachers recruitment scam that's taken center stage, with the TMC MP Abhishek Banerjee facing nearly 10 hours of questioning by the ED. Sources saying that the ED grilled him on the alleged money trail, the cash transfers, chats and links to key accused in the case. Investigators also sought answers on the utilization of funds allegedly amassed through the scam and the possible knowledge of irregularities. While the BJP says Abhishek Banerjee must answer for corruption allegations, the TMC has termed the probe a political witch hunt. Speaking after his appearance, Abhishek Banerjee alleged that the opposition leaders are being threatened through central agencies and has now promised to continue that very fight. And today is the day when he's going to be questioned by the CID in a separate case.
13: বিজেপি নিয়ে যত কম বলা যায় তত ভালো. একদিকে দল ভাঙানির খেলা, আর একদিকে বিরোধী শক্তি যারা লড়াই করছে মাথা নত না করে, তাদেরকে কি করে দমানো যায়, তাদের ধমকানো যায়, চমকানো যায়, তাদের ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া যায়, কার্যত বিরোধী শূন্য করে দেওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গকে, সেই চেষ্টাই গত এক মাস ধরে করা হয়েছে.
12: देखिए, वो तो पुलिस का बात है, सीआईडी का बात है, ईडी का बात है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा. लेकिन आज जिस तरह से काउंसिलर लोगों में बोलिए, विधायक लोगों में बोलिए, सांसद लोगों में बोलिए, या आम टीएमसी कैडर में बोले, एक नीति कर दिया था चोरी करना, सिंडिकेट चलाना, काटमानी लिया, ये तो नॉर्मल था.

करप्शन करना ये तो नॉर्मल था। तो आज ये सब जवाब देना होगा, वेदर अभिषेक बनर्जी, वेदर ममता बनर्जी, वेदर यू नो अदर्स, जवाब देना पड़ेगा।

0: existent in India, and there are governments that have banned the RSS. They have taken note of the RSS, but they've never asked for registration, is what he claims. Now, he says that there is no reason for the RSS, which is a body of individuals, to go ahead and register. But as far as, Mr. Priyank Kharge, some of the Congress leaders, including Mr. B.K. Hariprasad, they believe otherwise, and they are demanding more answers. Now, how far this tug-of-war will continue, and how it will really fare, politically as well in the state of Karnataka, these are things that are going to be closely watched out for.
1: Deepak, as always, thank you so much for joining us with the lowdown. We've also got Shehzad Poonawalla on behalf of the BJP joining us on the broadcast this morning. Mr. Poonawalla, thank you for your time. Congress leaders argue that the RSS exerts enormous influence on politics while maintaining that it is not a political organization. How do you respond to that criticism?
2: See, first of all, Priyank Kharge is like the Rahul Gandhi of Karnataka. He should tell us that Pranab Mukherjee visited the RSS headquarters. So if he has a problem, he should go ask Mr. Mukherjee's family what RSS stands for. For 60, 70 years, Congress has run a campaign of calumny and supari politics against the RSS. None of it has lasted in courts. Rahul Gandhi has said RSS killed Mahatma Gandhi. He had to apologize for it. And we have seen that how the ban on RSS participation of government servants was uplifted by the Madhya Pradesh High Court. So I think that this kind of frustration against nationalists should stop. This is the same Priyank Kharge who will open arms, accept PFI and SDPI, but he has a problem with the RSS. This shows their double standards.
1: Mr. Poonawalla, thank you so much for joining us on behalf of the BJP. All right, let's turn our attention now to what's brewing as far as the Trinamool camp is concerned. After the merger of rebel TMC MPs with the NCPI, a legal tussle for the real TMC tag could be on the radar. You see, one of the senior-most rebel MPs, Sudeep Bandyopadhyay, laid out the next steps, hinting that in July they will stake claim to the party name and symbol, and that courts will settle the matter. But the rebel camp appears to be a divided house, because during deliberations held at Bhupendra Yadav's house, sources say one section wanted a clean break from Mamata Banerjee's party with no claim over the name or symbol, but another camp is in favour of staking claim to the Trinamool Congress legacy. But when it comes to the rebel MLAs, they say they have no plans to merge with any other political party.
3: जहां तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं। हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्च हुए हैं। ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं है।
4: टीएमसी बैनर में ही आप लोग आगे बढ़ेंगे?
3: ये तो बार बार हम लोग बोल चुके हैं, 80 में से 85 लोग, ये लोग एक साथ है, एकजुट है। ये कलेक्टिव क्या करेगा, ये बार बार हम लोग इसका दौरा किया है, मैं फिर और एक बार इसका दौरा नहीं करना चाहूंगा। हमारा स्टैंड लाउड एंड क्लियर है।
5: हम लोग हर समय ये कहते हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करना है, वो डेवलपमेंट का बात किए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग सब मिलकर डेवलपमेंट के साथी रहेंगे तो बंगाल के कलकत्ता की उन्नति ज़रूर होगी। मेरे ख्याल से देखा जाए, वक्त बोलेगा, मगर हम लोग सब साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ 100% है।
6: 20 MPs कल NCPI पार्टी
5: वो लेके हम बात नहीं करेंगे।
7: ऑपोजिशन का वॉइस को रोकने के लिए करते, डराता है, घर से मत निकालो, घर से मत निकालो, घर से निकालेगा तो अंडा फेंकेगा, अंडा फेंकेगा। ये अंडा कल्चर ले आया है शुभेंदु अधिकारी, खुद ये शुभेंदु अधिकारी खुद ये अंडा कल्चर ले आया है बीजेपी का, और इसको इंडल्जर है, और पुलिस सब खड़ा होके देखते है। देखो, पुलिस सब खड़ा होके, कोई फेसबुक देखता है, कोई खड़ा होके इधर का हाथ देके खड़ा होके रहता है, पुलिस पे क्यों कोई एक्शन नहीं, उसको मारो, पुलिस भी बोलता है मारो, पुलिस मंत्री तो शुभेंदु अधिकारी है, और पार्टी का तो चीफ मिनिस्टर है, तो वो भी मारो, दोनों मिलके मारो।
8: देखिए, जिसमें वो लोग टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिश्रुति दिए है और इतना सपना है बंगाल को आगे लेके जाने का, वो बहुत बड़ा काम है, वो कान में ही हम लोग जुटे हुए हैं।
1: All right. Meanwhile, let's turn our attention to the ED grilling as far as Abhishek Banerjee is concerned. The Enforcement Directorate's probe into the Bengal teachers' recruitment scam has taken center stage, with TMC MP Abhishek Banerjee facing nearly 11 hours of questioning. Sources say the ED grilled him on the alleged money trail, the cash transfers as well, chats and links.

0: to key accused in the case. And investigators also sought answers on the utilization of funds allegedly amassed through the scam and possible knowledge of irregularities too. While the BJP says Abhishek Banerjee must answer for the corruption allegations, the TMC time and again has asserted that this is a political witch hunt. Speaking after his appearance, Abhishek Banerjee alleged that opposition leaders are being threatened through central agencies, that central agencies have been weaponized, and he has vowed to continue the fight and not surrender.
1: BJP niye joto kom bola jay toto bhalo. Ekdike dol bhanganir khela, arekdike birodhi shokti jara lorai korche, matha noto na kore, taderke ki kore domano jay, tader dhomkano jay, chomkano jay, তাদের ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া যায়, কার্যত বিরোধী শূন্য করে দেওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গকে, সেই চেষ্টাই গত এক মাস ধরে করা হয়েছে।
2: ঠিকই, वो तो पुलिस का बात है, सीआईडी का बात है, ईडी का बात है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन आज जिस तरह से काउंसिलर लोगों में बोलिए, विधायक लोगों में बोलिए, सांसद लोगों में बोलिए या आम टीएमसी कैडर में बोलिए, एक नीति कर दिया था चोरी चोरी करना, चोरी करना, सिंडिकेट चलाना, काटमानी लिया, ये तो नॉर्मल था। करप्शन करना ये तो नॉर्मल था। तो आज ये सब जवाब देना होगा, वेदर अभिषेक बैनर्जी, वेदर ममता बैनर्जी, वेदर यू नो अदर्स, जवाब देना पड़ेगा।
3: कोई नौकरी चोरी किया होगा, तो कोई कभी दारू भी चोरी कर लिया, तो कभी रेशन चोरी किया, कभी रिलीफ आइटम्स भी चोरी कर लिया है, तो कभी कोयला घोटाला में उनका नाम आया है, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। सरकार का पैसा है तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना चाहिए, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे वो जवाब देना, इतना ऑडेसिटी है, वो कभी लोगों को जवाब देने के लिए उनको प्रिपेयर होना है ये सोचा ही नहीं था। वो घूमता था सामने 500 पुलिस, पीछे 500 पुलिस लेके, और कोई कुछ पूछता तो उनको अरेस्ट करवा देता। तो अभी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और जिस तरह से पब्लिक का पैसा जो लोग हड़प लिया है, 100 करोड़, 1000 करोड़ का हिसाब का गड़बड़ आ रहा है।
4: अभी 11 घंटा 12 घंटा चलेगा, इसका पहले भी किया है, अब भी हो रहा है, बहुत सारा कॉम्प्लेंस है, सब जगह उनका नाम आता है, तो इसलिए इसकी कार्रवाई शुरू हुई है, अब देखिए कहाँ तक जाता है।
0: All right, from West Bengal, let's turn our attention now to Maharashtra, where amid the Operation Tiger buzz, basically speculating MPs from Shiv Sena, UBT to quit the party and join the Eknath Shinde-led Sena, Sanjay Raut has asserted that all of its MPs are with the Uddhav Thackeray-led party and declared to launch Operation Wolf. Less than 48 hours since the Matoshri huddle of the UBT MPs, the Shiv Sena with the Uddhav Thackeray faction, Operation Tiger politics is yet again back in focus. Despite the show of strength, Shiv Sena MLC Krupal Tumane has suggested that 7 of the 9 Shiv Sena UBT MPs could rebel against the party ahead of the winter session later this year. This comes after a report suggests that Uddhav Thackeray during this Matoshri huddle reportedly said, and I quote, "What is the point of forcibly holding back someone who wants to leave?" adding that the rebels should be let go. Meanwhile, Shiv Sena MLC reiterated that Operation Tiger is far from over and that the names could come out in the open as early as in the next 15 days, with many MLAs to follow. Here are the reactions you can't ignore.
5: देखिए, उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसमें अंदरूनी तौर पर भयंकर रूप से झगड़ा चल रहा है। उनके जो विधायक और सांसद हैं, उनका विश्वास नेतृत्व पर नहीं रहा। उनका आरोप है कि हमारा नेतृत्व बहुत अहंकारी हो गया है, हमारा नेतृत्व घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम करता है, हमारा नेतृत्व, उनका आरोप है कि कैडर से कोई संवाद नहीं रखता है। उनके जो विधायक और सांसद है वो बोलते हैं कि हमसे हमारा लीडरशिप मिलता ही नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, और इस वजह से पूरा का पूरा जो कैडर है वो इस समय नेतृत्व से नाराज है।
6: देखिए, ऑपरेशन उल्फ कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदी बात वो हमेशा करते हैं, असंसदीय भाषा में बात करते हैं। ये तो यहाँ पे सब टाइगर्स है, इसलिए वापस जीत के आपके लोग क्यों नहीं जीत के आए? बाला साहब के विचारों पे जो चलते हैं उनको टाइगर बोला जाता है, तो हम लोग बाला साहब के विचारों पे चले, ना कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी जुड़े, और कांग्रेस के साथ जुड़ना बाला साहब को कभी भी मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं अपना पक्ष बर्खास्त कर दूंगा जब ऐसी स्थिति आए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: स्टेप इनटू एनडीटीवी लाइफलाइन योर

0: with Uddhav Thackeray. Altogether, there has been questions that have been raised of Sanjay Deshmukh yesterday meeting the union minister in Delhi while he was not present physically in the meeting with Uddhav Thackeray. It was stated by the Uddhav Thackeray faction that he is a union minister and it is not illegal to meet any union minister. The MPs usually meet Prime Minister, Home Minister, Education Minister and different ministers of the country. Certainly, it is not wrong to meet them, and yesterday he met him in the national capital, which is a part of the work that he wanted to do for his constituency. So yes, the Uddhav Thackeray faction clearly dismissing these claims, but it is the Eknath Shinde faction which is saying that it is the last phase which is going on, and the talks have already been done. It is just the time that these MPs will join the Eknath Shinde faction in Maharashtra.
1: Right. Shwara, thank you for getting us details. And it's really, like, you know, it's only been 48 hours since that meeting that took place over the weekend at Mathuchi at the residence of Uddhav Thackeray. This was in regard to, of course, Operation Tiger politics that's yet again back in focus, with rival Shinde faction making tall defection claims. Despite that show of strength, Shiv Sena MLC, we just heard him suggesting that 7 of the 9, you know, MPs of the Uddhav Thackeray faction are going to be switching sides, and all that is going to be happening. And, you know, we'll know of this, and it's a, you know, the time frame has also been given. It's going to happen before the winter session. This comes after reports suggest that Uddhav Thackeray, during that huddle, reportedly has said, what is the point of forcibly holding back someone who wants to leave?
0: Joining with us is senior leader Sanjay Raut. Sir, जो बातें चल रही हैं ऑपरेशन टाइगर, फिर आपने बोला कि हम ऑपरेशन वुल्फ लॉन्च करेंगे, वहाँ के एक MLC हैं वो कह रहे हैं कि 7 MPs हमारे टच में हैं।
2: देखो, ये MLC वगैरह क्या होता है उधर शिंदेगढ़ के, कौन है ये आदमी? मैं उसको खुद पहचानता नहीं हूँ, ये बात करेगा क्या? देखिए, शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे ने बनाई हुई पार्टी है, मजबूत पार्टी है। ये MLA और MPs की पार्टी नहीं है। हम लोग MLA बनाते हैं, बार बार लोग छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, उनकी इच्छा। बेईमान लोगों, बेईमान जो होता है, आप उनको कितने दिन पकड़ कर रखेंगे? देख लेंगे ना क्या होता है वो।
0: सर, ऑनलाइन तो नहीं, ऑनलाइन जुड़े आपने बोला कि 9 के 9 सांसद उद्धव ठाकरे के मीटिंग्स में जुड़े, लेकिन कल जाकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं, इसके क्या मायने?
2: केंद्रीय मंत्री को मिलना एक सांसद ने जाकर अपराध है क्या? अगर मेरा प्रधानमंत्री के पास कुछ काम है, देश के प्रधानमंत्री है, तो मैं जाऊंगा प्रधानमंत्री से मिलने, मैं गृहमंत्री से मिलूंगा, मैं हेल्थ मिनिस्टर से मिलूंगा, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलूंगा, क्यों नहीं मिले? हम MP है, हम सांसद है, वो मंत्री है, कैबिनेट में है, देश के लिए उनको रखा है, तो हम उनको जाकर मिलेंगे।
0: तृणमूल जैसी स्थिति महाराष्ट्र में रिपीट करेंगे, इस तरीके के क्लेम्स करेंगे?
2: देखो, ऐसा नहीं होता है। आप लोग दिल्ली में बैठकर जो एक चित्र बना रहे हो, 12 साल में मोदी और शाह ने क्या किया? यही किया ना, देश की हालत इतनी ख़राब कर दी है लोगों ने। आप उनके ऊपर सोचो, आप पत्रकार भी हो, आप सोचना चाहिए सब।
0: सर, आपने कहा उन्होंने कसम खाई कि आखिरी दम तक उद्धव ठाकरे जी की।
2: हाँ, ऐसे कसम तो खाते हैं लोग, पहले वाले ने भी खाती।
0: बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। दैट वॉज Sanjay Raut exclusively speaking to NDTV, dismissing all the claims that any other MP of the Shiv Sena, Uddhav Thackeray, is in touch with the Eknath Shinde camp. It is all of these MPs which will be till the last breath in the Shiv Sena, Uddhav Thackeray faction. This is Aishwarya Jain with the video Xavier for NDTV in Delhi.
1: Thank you, Aishwarya, for getting us all those details. And of course, for now, we're slipping into a short break. On the other side, we'll get you Donald Trump and J.D. Vance saying that the Strait of Hormuz has partially opened and be completely operational by Friday. Getting you all those details on the other side.
3: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
4: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
5: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
6: We should be awarding companies and individuals who have focus not only

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Welcome back. Let's get you the latest when it comes to West Bengal after the merger of the rebel TMC MPs with NCPI. Now, legal tussle is for the real tag of the TMC. That could really be coming up next in the state of West Bengal. One of the senior most rebel MPs, Sudeep, has laid out the next steps, hinting that in July they will stake claim as far as the party's name and the party's symbol is concerned. And that court will settle the matter. But the rebel camp appears to be really divided in the house. During deliberations held at Bhupinder Yadav's residence, sources are saying that one section wanted a clean break when it comes to the party from Mamata Banerjee's party, with no claim over the name or the symbol. But then the other camp is in favour of staking claim to the Trinamool Congress's legacy. But when it comes to the rebel MLAs, they say they have no plans to merge with any other political party.
3: जहाँ तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्च हुए हैं, ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं है।
4: तो टीएमसी बैनर में ही आप लोग आगे बढ़ेंगे?
3: ये तो बार बार हम लोग बोल चुके हैं, 80 में से 85 लोग, ये लोग एक साथ है, एकजुट है, ये कलेक्टिव क्या करेगा। ये बार बार हम लोग इसका दौरा किया है, मैं फिर और एक बार इसका दौरा नहीं करना चाहूंगा। हमारा स्टैंड लाउड एंड क्लियर है।
5: देखिए, इसमें वो लोग टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिश्रुति दिए है और इतना सपना है बंगाल को आगे लेके जाने का, वो बहुत बड़ा काम है, वो कान में ही हम लोग जुटे हुए हैं।
2: More news from West Bengal, and it's the Enforcement Directorate, the ED's probe into the Bengal teachers recruitment scam that's taken center stage, with the TMC MP Abhishek Banerjee facing nearly 10 hours of questioning by the ED. Sources are saying that the ED grilled him on the alleged money trail, the cash transfers, chats and links to key accused in the case. Investigators also sought answers on the utilization of funds allegedly amassed through the scam and the possible knowledge of irregularities. While the BJP says Abhishek Banerjee must answer for corruption allegations, the TMC has termed the probe a political witch hunt. Speaking after his appearance, Abhishek Banerjee alleged that the opposition leaders are being threatened through central agencies and has now promised to continue that very fight. And today is the day when he's going to be questioned by the CID in a separate case.
6: বিজেপি নিয়ে যত কম বলা যায় তত ভালো। একদিকে দল ভাঙানির খেলা, আর একদিকে বিরোধী শক্তি যারা লড়াই করছে মাথা নত না করে, তাদেরকে কি করে দমানো যায়, তাদের ধমকানো যায়, চমকানো যায়, তাদের ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া যায়, কার্যত বিরোধী শূন্য করে দেওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গকে, সেই চেষ্টাই গত এক মাস ধরে করা হয়েছে।
5: देखिए, वो तो पुलिस का बात है, सीआईडी का बात है, ईडी का बात है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन आज जिस तरह से काउंसिलर लोगों में बोलिए, विधायक लोगों में बोलिए, सांसद लोगों में बोलिए, या आम टीएमसी कैडर में बोले, एक नीति कर दिया था चोरी करना, सिंडिकेट चलाना, काटमानी लिया, ये तो नॉर्मल था, करप्शन करना ये तो नॉर्मल था। तो आज ये सब जवाब देना होगा, वेदर अभिषेक बैनर्जी, वेदर ममता बैनर्जी, वेदर यू नो अदर्स, जवाब देना पड़ेगा।
2: Step into NDTV Lifeline, your trusted guide to better health across every screen and every format. Your weekend destination for expert voices, wellness hacks and actionable advice. The conversations that go deeper, where myths are unpacked and health is truly understood. Sharp, credible health insights made for the way you scroll. From symptoms to solutions, medical explainers, interviews, credible health stories and updates, all in one place. So watch it, hear it, stream it, read it and follow it. Because in a world full of health noise, trust really is everything.
7: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
8: 5 hours to go for

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Welcome back. Let's get you the latest when it comes to West Bengal after the merger of the rebel TMC MPs with NCPI. Now, legal tussle is for the real tag of the TMC. That could really be coming up next in the state of West Bengal. One of the senior most rebel MPs, Sudeep, has laid out the next steps, hinting that in July they will stake claim as far as the party's name and the party's symbol is concerned. And that court will settle the matter. But the rebel camp appears to be really divided in the house. During deliberations held at Bhupinder Yadav's residence, sources are saying that one section wanted a clean break when it comes to the party from Mamata Banerjee's party, with no claim over the name or the symbol. But then the other camp is in favour of staking claim to the Trinamool Congress's legacy. But when it comes to the rebel MLAs, they say they have no plans to merge with any other political party.
3: जहाँ तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्ज हुए हैं, ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं है।
4: टीएमसी बैनर में ही आप लोग आगे बढ़ेंगे?
3: ये तो बार बार हम लोग बोल चुके हैं, 80 में से 85 लोग, ये लोग एक साथ है, एकजुट है। ये कलेक्टिव क्या करेगा, ये बार बार हम लोग इसका दौरा किया है, मैं फिर और एक बार इसका दौरा नहीं करना चाहूंगा। हमारा स्टैंड लाउड एंड क्लियर है।
5: देखिए, जिसमें वो लोग टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिश्रुति दिए है और इतना सपना है बंगाल को आगे लेके जाने का, वो बहुत बड़ा काम है, वो कान में ही हम लोग जुटे हुए हैं।
2: More news from West Bengal, and it's the Enforcement Directorate, the ED's probe into the Bengal teachers recruitment scam that's taken center stage, with the TMC MP Abhishek Banerjee facing nearly 10 hours of questioning by the ED. Sources are saying that the ED grilled him on the alleged money trail, the cash transfers, chats and links to key accused in the case. Investigators also sought answers on the utilization of funds allegedly amassed through the scam and the possible knowledge of irregularities. While the BJP says Abhishek Banerjee must answer for corruption allegations, the TMC has termed the probe a political witch hunt. Speaking after his appearance, Abhishek Banerjee alleged that the opposition leaders are being threatened through central agencies and has now promised to continue that very fight. And today is the day when he's going to be questioned by the CID in a separate case.
6: বিজেপি নিয়ে যত কম বলা যায় তত ভালো। একদিকে দল ভাঙানির খেলা, আর একদিকে বিরোধী শক্তি যারা লড়াই করছে মাথা নত না করে, তাদেরকে কি করে দমানো যায়, তাদের ধমকানো যায়, চমকানো যায়, তাদের ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া যায়, কার্যত বিরোধী শূন্য করে দেওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গকে, সেই চেষ্টাই গত এক মাস ধরে করা হয়েছে।
5: देखिए, वो तो पुलिस का बात है, सीआईडी का बात है, ईडी का बात है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन आज जिस तरह से काउंसिल

0: two of the rebel MLAs. They say they have no plans to merge with any other political party.
1: जहां तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्ज हुए हैं, ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं है।
2: टीएमसी बैनर में ही आप लोग आगे बढ़ेंगे?
1: ये तो बार बार हम लोग बोल चुके हैं, 80 में से 85 लोग, ये लोग एक साथ है, एकजुट है, ये कलेक्टिव क्या करेगा, ये बार बार हम लोग इसका दौरा किया है। मैं फिर और एक बार इसका दौरा नहीं करना चाहूंगा, हमारा स्टैंड लाउड एंड क्लियर है।
3: देखिए, जिसमें वो लोग टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिश्रुति दिए है और इतना सपना है बंगाल को आगे लेके जाने का, वो बहुत बड़ा काम है, वो कान में ही हम लोग जुटे हुए हैं।
0: More news from West Bengal, and it's the Enforcement Directorate, the ED's probe into the Bengal teachers recruitment scam that's taken center stage, with the TMC MP Abhishek Banerjee facing nearly 10 hours of questioning by the ED. Sources are saying that the ED grilled him on the alleged money trail, the cash transfers, chats and links to key accused in the case. Investigators also sought answers on the utilization of funds allegedly amassed through the scam and the possible knowledge of irregularities. While the BJP says Abhishek Banerjee must answer for corruption allegations, the TMC has termed the probe a political witch hunt. Speaking after his appearance, Abhishek Banerjee alleged that the opposition leaders are being threatened through central agencies and has now promised to continue that very fight. And today is the day when he's going to be questioned by the CID in a separate case.
4: BJP niye joto kom bola jay toto bhalo. Ekdike dol bhanganir khela, আর একদিকে বিরোধী শক্তি যারা লড়াই করছে মাথা নত না করে, তাদেরকে কি করে দমানো যায়, তাদের ধমকানো যায়, চমকানো যায়, তাদের ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া যায়, কার্যত বিরোধী শূন্য করে দেওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গকে, সেই চেষ্টাই গত এক মাস ধরে করা হয়েছে।
3: ঠিকই, ও তো পুলিশ কা বাত হ্যায়, সিআইডি কা বাত হ্যায়, ইডি কা বাত হ্যায়, ও লোগ ইনভেস্টিগেশন করেগা, লেকিন আজ জিস তরহ সে काउंसिलर लोगों में बोलिए, विधायक लोगों में बोलिए, सांसद लोगों में बोलिए, या आम टीएमसी कैडर में बोले, एक नीति कर दिया था चोरी करना, सिंडिकेट चलाना, कटमनी लिया, ये तो नॉर्मल था, करप्शन करना ये तो नॉर्मल था। तो आज ये सब जवाब देना होगा, वेदर अभिषेक बैनर्जी, वेदर ममता बैनर्जी, वेदर यू नो अदर्स, जवाब देना पड़ेगा।
5: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
6: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
7: Higher end, check the audio.
5: Let's do it.
8: Breaking story, we're jumping straight into it.
5: We've got a picture of the letter.
9: What is in your letter?
5: You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
10: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
11: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
12: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
13: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
14: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
15: Launch control, 0 to 100.
16: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
17: This car makes no sense, yet it makes every sense.
18: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
16: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
19: When others...
20: Hello and welcome. You're watching Breaking Ground. I'm Gargi Rawat. Coming up ahead, it's another case of a minor being assaulted in Tamil Nadu. Once again, a migrant worker is involved. The opposition slams the Vijay government, demands the strictest action. Also coming up ahead, now messaging service Telegram has been temporarily banned in a move to curb paper leak ahead of the NEET exam. We'll get you the details. First, a look at the headlines.

0: अगर है तो वो भी मारो, दोनों मिलकर मारो।
1: देखिए इसमें वो लोग टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतना प्रतिश्रुति दिए है और इतना सपना है बंगाल को आगे लेके जाने का, वो बहुत बड़ा काम है, वो कान में ही हम लोग जुटे हुए हैं।
2: All right, and after rebel MPs in the Trinamool Congress, now rebel MPs in the Shiv Sena Uddhav Thackeray. Operation Tiger Buzz is rocking the Uddhav Sena. Political drama continuing to intensify in Maharashtra as the Shinde Sena leader has made a big claim on the Uddhav camp MPs. Shinde Neta has said that 7 Uddhav Sena MPs will join the Shinde faction before the monsoon session and therefore become then a part of the NDA. The statement comes amid increased political activity and back-channel discussions in the state, adding to the political heat. Reports also suggest that Uddhav Thackeray, during a recent Matoshri meeting that he had called, reacted to this exit buzz, saying that there is no point in forcibly holding back those who want to leave, indicating a softer stand towards potential rebels. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session will see a major political shake-up in Maharashtra as well.
3: ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है, जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा, मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा।
4: शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे ने बनाई हुई पार्टी है, मजबूत पार्टी है, ये MLA और MPs की पार्टी नहीं है। हम लोग MLA बनाते हैं, बार बार लोग छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, उनकी इच्छा। बेईमान लोगों, बेईमान जो होता है, आप उनको कितने दिन पकड़ कर रखेंगे, देख लेंगे ना क्या होता है वो।
5: देखिए उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसमें अंदरूनी तौर पर भयंकर रूप से झगड़ा चल रहा है। उनके जो विधायक और सांसद है उनका विश्वास नेतृत्व पर नहीं रहा। उनका आरोप है कि हमारा नेतृत्व बहुत अहंकारी हो गया है, हमारा नेतृत्व घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम करता है, हमारा नेतृत्व, उनका यह आरोप है कि कैडर से कोई संवाद नहीं रखता है। उनके जो विधायक और सांसद है वो बोलते हैं कि हमसे हमारा लीडरशिप मिलता ही नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है, और इस वजह से पूरा का पूरा जो कैडर है वो इस समय नेतृत्व से नाराज है।
6: देखिए ऑपरेशन उल्फ कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदी बात वो हमेशा करते हैं, असंसदीय भाषा में बात करते हैं। ये तो यहाँ पे सब टाइगर्स है इसलिए वापस जीत के, आपके लोग क्यों नहीं जीत के आए? बाला साहब के विचारों पे जो चलते हैं उनको टाइगर बोला जाता है, तो हम लोग बाला साहब के विचारों पे चले, ना कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी जुड़े, और कांग्रेस के साथ जुड़ना बाला साहब को कभी भी मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला था कि मैं अपना पक्ष बर्खास्त कर दूंगा जब ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे कांग्रेस के साथ ज्वाइन होना पड़े, तो ये बाला साहब के विचार थे, और वो विचारों के खिलाफ जो भी कृति हुई है वो लोगों ने अप्रूव नहीं किया है।
7: We are not getting into any speculation. There is no Operation Tiger. There is only Operation Progress. And we work in that direction to work for the people of Maharashtra. Our leader, Eknathji Shinde, is a most popular mass leader. And you see Paksh Pravesh every single day. We are not here to divide any party or destroy any party or poach from any party. We are here to do our job, which is Operation Progress.
2: All right, so there you heard the various comments that have been made. Let's go across to Abhishek Awasthi now for more on this entire story. And Abhishek, so what is the latest really that you're hearing about the Uddhav Shiv Sena, Uddhav Thackeray apparently taking this stand, saying that those who want to leave will leave. Today may not be my day, but tomorrow they will realize their mistake. Take us through all these developments that are taking place in Maharashtra.
8: See, we will have to understand that this has not happened in just one day itself. You know, Operation Tiger, something which was brewing from past few months, and time and again we have reported certain secrets.

0: completed within the next 5 to 7 days. Sources also say Lok Sabha Speaker Om Birla will be taking a decision in the matter of the TMC rebel MPs only after he hears both sides. The Speaker's office has also emailed the core group of TMC MPs led by Mamata Banerjee. In fact, yesterday a letter from the Speaker's office was sent to Abhishek Banerjee at around 2 p.m. Just 10 minutes later, TMC MP Kirti Azad received a call from the Speaker's office asking whether Abhishek Banerjee would be meeting the Speaker by 4 p.m. Sources say Kirti Azad immediately sent an email in response and later met with the Speaker at around 3:30 p.m. Abhishek Banerjee, remember, has been summoned consistently by central agencies over the last couple of days for questioning.
1: जहां तक पश्चिम बंगाल का लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, ऐसा कुछ बारे में हम लोगों को पता नहीं है. हम लोग भी टीवी के जरिए देखे हैं कि 20 एमपी और एनसीपीआई में मार्च हुए हैं. ये उन लोगों का फैसला है, हम लोग के अंदर ऐसा कोई चर्चा ही हुआ नहीं है.
2: टीएमसी बैनर में ही आप लोग आगे बढ़ेंगे?
1: ये तो बार बार हम लोग बोल चुके हैं, 80 में से 85 लोग, ये लोग एक साथ है, एकजुट है. ये कलेक्टिव क्या करेगा, ये बार बार हम लोग इसका दौरा किया है. मैं फिर और एक बार इसका दौरा नहीं करना चाहूंगा. हमारा स्टैंड लाउड एंड क्लियर है.
3: তারপরে স্পিকারের ঘরে আলোচনা হয়েছিল, আমাদেরকে ঘর দেওয়া হবে এবং একটা ব্লক দেওয়া হবে. তার বাইরে কোনো আলোচনা কোনো পর্যায়ে কোথাও হয়নি. মন্ত্রী হওয়া, পার্টির নেতা হওয়া, এসব বিষয় নিয়ে যারা স্পেকুলেশন করছেন, আমার অনুরোধ এগুলো বন্ধ রাখুন. এসব ধরনের কোনো আলোচনা কোনো পর্যায়ে কোথাও হয়নি, আমি অস্বীকার করছি এবং এখনও বলছি যে কোনো একটি উদ্দেশ্যমূলক মহল থেকে এই কথা প্রচার করে আমাদের মধ্যে এই যে ঐক্যের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে.
4: আমরা হর সময় ইয়ে কহতে হ্যাঁ যে পার্টি পলিটিক্স সে উপর লোকের লিয়ে কাম করনা হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্ট করনা হ্যাঁ. वो डेवलपमेंट का बात किए हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर हम लोग सब मिलकर डेवलपमेंट के साथ ही रहेंगे तो बंगाल के कलकत्ता की उन्नति जरूर होगी. मेरे ख्याल से देखा जाए, वक्त बोलेगा, मगर हम लोग सब साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ 100% है. वो लेके हम बात नहीं करेंगे.
5: स्पीकर के काम है निरपेक्ष रहना. तो मैं ये जो सुना, जिस दिन ये डिसटिस्फाइड एमपी चिट्ठी दिया, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से चिट्ठी दिया गया था. तो मैंने ऐसा सुना कि स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस को भी एक चिट्ठी दिया उनसे मिलने के लिए. मिला कि नहीं मुझे पता नहीं.
6: ऑपोजिशन का वॉयस को रोकने के लिए करते, डराता है, घर से मत निकालो, घर से मत निकालो, घर से निकालेगा तो अंडा फेंकेगा, अंडा फेंकेगा. ये अंडा कल्चर ले आया है शुभेंदु अधिकारी खुद. ये शुभेंदु अधिकारी खुद ये अंडा कल्चर ले आया है बीजेपी का, और इसको इंडल्जर एंड पुलिस सब खड़ा होके देखते हैं. देखो पुलिस सब खड़ा होके, कोई फेसबुक देखता है, कोई खड़ा होके इधर का हाथ देके खड़ा होके रहता है. पुलिस पे क्यों कोई एक्शन नहीं, उसको मारो. पुलिस भी बोलता है मारो. पुलिस मंत्री तो शुभेंदु अधिकारी है और पार्टी का तो चीफ मिनिस्टर है, तो वो भी मारो, दोनों मिलकर मारो.
7: देखिए इसमें वो लोग टीएमसी पार्टी को छोड़े, वो दूसरा पार्टी को ज्वाइन करे, क्या करे, उसमें हम लोग का विशेष कोई इंटरेस्ट नहीं है. क्योंकि इतना प्रतिश्रुति दिए है और इतना सपना है बंगाल को आगे लेके जाने का, वो बहुत बड़ा काम है, वो कान में ही हम लोग जुटे हुए हैं.
0: News now from Tamil Nadu. In a string of recent crimes across the state have reignited concerns over public safety. A shocking case emerged from Tamil Nadu's Kanchipuram, where an 11-year-old girl was allegedly sexually abused. Police have arrested a migrant worker from West Bengal in connection with the case and launched a detailed investigation. Amid the growing debate, opposition has also launched a sharp attack on Vijay government. Former Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has sought answers from the government and asked what steps are being taken to prevent criminals from committing crimes without any fear. Meanwhile, Annamalai, who recently left the BJP, has called for stricter verification mechanisms, urging employers to thoroughly check the identity, background and records of migrant workers before hiring them.
8: Anyone does any mistake against the rule, against the law, and against any harassment or anything, it's not concerned about any party or who he is or anything. Anyone does a mistake, CM has a clear direction, like they have to, any strict action will be taken on them. As per the legal procedures, no one, there is no consideration, even if it is who he belongs to any party. That is what has been. Yes.
9: Yeah, it is on the increase. When it had one or two incidents happened during the DMK rule, Vijay was shouting like anything. Now I don't know what happened to Vijay's mouth. There are no words coming from his mouth. Why? As a chief minister, he talks much. Singapen Padai and all those things. What are they doing? Why this is happening? Vijay has to reply, but he will not speak. He is afraid of speaking. He will not even meet the press. So this government is not a government. They are not governing. The problem is that they are not governing. A governance means to protect its citizens.
10: The crime against women in Tamil Nadu and across the country is deeply disturbing and painful. It's one side we have to use the law enforcement agency. From the beginning, we put the ideas in young boys' mind that woman is a body. Woman is the body owned by a male and woman is a sexual object. So this kind of ideas we are putting in young people's mind. This is also in over a time when they grow up creating a lot of issue for women. So this is a kind of a social issue as well. So we have to think in different side. I had filed a private member bill on this. We have to create an education curriculum from a primary school to higher education.
11: We have no words to express. Putting yourself in the shoe of a parent or, you know, any other person who is witnessing such an episode happening. It's unbelievable what has happened to our state ever since the DMK came to power in 2021. And people voted for change in 2026 because of the decreasing situation of law and order and the worsening of crimes against women. But after the TVK came to power, the crimes have almost doubled with absolutely no accountability nor any action by the TVK government. The ministers of the TVK are busy creating Instagram reels and talking about how great their leader, the chief minister, is, but on the ground there seems to be no action.
0: Now let's take you through the latest government steps ahead of the NEET re-exam. Ahead of the re-exam, the center has temporarily blocked access to Telegram till the 22nd of June. So Telegram, the messaging platform, is banned in the country. The platform's message editing feature has also been disabled till June 30th. The National Testing Agency welcomed the center's decision to impose this temporary restriction on Telegram, describing the move as a necessary step to curb examination-related fraud. BJP Tamil Nadu Chief K. Annamalai has, however, raised concerns over the extensive security arrangements for the retest, saying additional checks, stricter frisking, and increased monitoring could add to the students' stress and anxiety, warning that the measures may backfire despite efforts to prevent leaks. The BJP defended the arrangement, saying that biometric verification, CCTV surveillance, and security checks are standard practices for large-scale examinations. Well, with that, we'll sip into a short break. More news coming up on the other side. Stay with us.

0: every sense.
1: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
0: Your friend said, "Yeh le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आ गया मसाला।
5: The news, Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
6: Wow.
5: 4K. The works.
6: Where's the hook?
5: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
6: Where's the hook?
5: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
6: Bro, where's the hook?
5: Cross-platform, digital first, virality.
6: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
5: That's it. That's what we're looking for.
6: The best campaigns.
5: The hottest trends.
6: The smartest brand moves on our new show.
5: But wait, what do we call it?
6: The Hook.
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
8: Millions of people sleep every night but never truly rest. Their breathing stops again and again without them even knowing it. This is sleep apnea, a condition far more common and far more dangerous than we realize.
9: This week on NDTV Lifeline, we decode sleep apnea, the hidden disorder linked to heart disease, diabetes, fatigue, and more.
10: All right, and after rebel MPs in the Trinamool Congress, now rebel MPs in the Shiv Sena Uddhav Thackeray. Operation Tiger Buzz is rocking the Uddhav Sena. Political drama continuing to intensify in Maharashtra as the Shinde Sena leader has made a big claim on the Uddhav camp MPs. Shinde Neta has said that 7 Uddhav Sena MPs will join the Shinde faction before the monsoon session and therefore become then a part of the NDA. The statement comes amid increased political activity and back-channel discussions in the state, adding to the political heat. Reports also suggest that Uddhav Thackeray, during a recent Matoshri meeting that he had called, reacted to this exit buzz, saying that there is no point in forcibly holding back those who want to leave, indicating a softer stand towards potential rebels. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session will see a major political shake-up in Maharashtra as well.
11: ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है. जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है. अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा. मानसून सत्र के पहले में ये हो जाएगा.
12: शिवसेना एक ऐसी पार्टी है, बालासाहेब ठाकरे ने बनाई हुई पार्टी है, मजबूत पार्टी है. ये MLA और MPs की पार्टी नहीं है. हम लोग MLA बनाते हैं, बार बार लोग छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, उनकी इच्छा. बेईमान लोगों, बेईमान जो होता है, आप उनको कितने दिन पकड़ कर रखेंगे? देख लेंगे ना क्या होता है वो.
13: देखिए, उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसमें अंदरूनी तौर पर भयंकर रूप से झगड़ा चल रहा है. उनके जो विधायक और सांसद है उनका विश्वास नेतृत्व पर नहीं रहा. उनका आरोप है कि हमारा नेतृत्व बहुत अहंकारी हो गया है, हमारा नेतृत्व घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम करता है. हमारा नेतृत्व, उनका यह आरोप है कि कैडर से कोई संवाद नहीं रखता है. उनके जो विधायक और सांसद है वो बोलते हैं कि हमसे हमारा लीडरशिप मिलता ही नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है. और इस वजह से पूरा का पूरा जो कैडर है वो इस समय नेतृत्व से नाराज है.
14: देखिए, ऑपरेशन उल्फ कहना बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदी बात वो हमेशा करते हैं. संसदीय भाषा में बात करते हैं, ये तो यहाँ पे सब

0: front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
1: So many attacks.
0: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
3: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
3: Iron is in France.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
4: Millions of people sleep every night but never truly rest. Their breathing stops again and again without them even knowing it. This is sleep apnea, a condition far more common and far more dangerous than we realize. This week on NDTV Lifeline, we decode sleep apnea, the hidden disorder linked to heart disease, diabetes, fatigue, and more.
5: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
6: All right, and after rebel MPs in the Trinamool Congress, now rebel MPs in the Shiv Sena Uddhav Thackeray. Operation Tiger Buzz is rocking the Uddhav Sena. Political drama continuing to intensify in Maharashtra as the Shinde Sena leader has made a big claim on the Uddhav camp MPs. Shinde Neta has said that 7 Uddhav Sena MPs will join the Shinde faction before the monsoon session and therefore become then a part of the NDA. The statement comes amid increased political activity and back-channel discussions in the state, adding to the political heat. Reports also suggest that Uddhav Thackeray, during a recent Matoshri meeting that he had called, reacted to this exit buzz, saying that there is no point in forcibly holding back those who want to leave, indicating a softer stand towards potential rebels. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session will see a major political.
7: Zulfikar ji, we've been discussing about the various policies of the Modi government in the last 12 years, specifically putting women in the front and center of policy making. Tell us how they have benefited from it and what are the other expectations they might have from schemes like this.
8: Durg jile ke Patan tehsil ke कुर्मी गोंद्रा गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां की एक आंगनवाड़ी में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ महिला हितग्राही हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ मिला है और किस तरीके से उनका जीवन बदला और जब वो गर्भवती थी उन्हें कितना लाभ हुआ और कितना फ़ायदा हुआ और इस योजना के बाद उनके परिवार को किस तरीके से आर्थिक लाभ मिला है वो उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हितग्राही हैं। दीदी, क्या नाम है आपका?
9: प्रियंका मंडलेस।
8: प्रियंका जी, आप कब गर्भवती हुए थे और इस प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ आपको मिला है तो कब इसके बारे में जानकारी लगी आपको?
9: मुझे 2018 में मैं अपने पहले बेटी को हुई हूँ, उससे मतलब आंगनबाड़ी के द्वारा मुझे पता चला ये लाभ, ये योजना प्रधानमंत्री आवास मतलब योजना मातृत्व योजना का लाभ मिला है मेरे को।
8: तो आप इसी आंगनबाड़ी आए थे, एक दूसरी आंगनबाड़ी गए थे जहाँ से आपको जानकारी मिली?
9: हाँ, यहीं के आंगनबाड़ी से मिले हैं।
8: तो कितनी राशि मिली आपको?
9: 5,000 मिला था मेरे को, 3 किस्त में मिले हैं। पहला किस्त 1,000, फिर 2,000 और बाद में तीसरा किस्त भी 2,000 मिले हैं, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ और मेरे को मतलब सहयोग राशि मिला। जब हम गर्भ में रहते हैं तो बहुत से कमजोरी वीकनेस होता है तो खान पान में बहुत से ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हमें सरकार द्वारा बहुत मतलब लाभ मिले तो हमको भी अच्छा लगा। खान पान में मतलब हमें सहायता मिला सहयोग राशि के द्वारा, 5,000 के द्वारा, और बच्चे को भी कुपोषित होने से बचाने के लिए बहुत अच्छा लाभ मिला है सरकार के द्वारा हमें।
8: दीदी, आपका क्या नाम है?
10: मेरा नाम वर्षा शाहू है, मैं कुर्मी गुड़ा से हूँ।
8: अच्छा, किस तरीके से इस योजना का आपको लाभ मिला?
10: मुझे इस योजना में यहाँ आई तो मुझे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ 5,000 मिला, 2 किस्तों में। पहला किस्त 3,000 मिला, तो उस राशि से मैंने अपना पौष्टिक आहार जैसे दूध, गुड़, खजूर, चुकंदर।
8: बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल होने पर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
2: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: दिस इज वेयर द फ्यूचर शोज अप फर्स्ट। कॉन्वर्सेशंस विद द बिगेस्ट नेम्स इन टेक एंड एआई। Putting tech through its paces. No fancy jargon or spec sheets, just what matters. If it's shaping the future, you'll see it here first. The Tesla Model Y. This is Tech 360. Real talk, real reviews across the NDTV network.
4: Millions of people sleep every night but never truly rest. Their breathing stops again and again without them even knowing it.

0: बिल्कुल, जो बंगाल में टीएमसी के साथ हुआ वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हो रहा है। उद्धव ठाकरे के 6 जो सांसद है वो अभी नॉट रीचेबल है, वो दिल्ली आ रहे हैं ऐसे पता चला है, और कल वो अपनी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद जो संसद का ग्रुप लीडर है वो तय करेंगे और व्हिप भी तय करेंगे, और उसके बाद ये लेटर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मीटिंग करेंगे और उनको ये जो लेटर है वो देंगे, ऐसा भी जानकारी पता चल रही है। लेकिन अभी जो ताज़ी खबर है जो कि संजय राउत ने अभी ट्वीट किया है, और ट्वीट करके ये बताया गया है कि सांसदों को खरीदने का काम शुरू हुआ है और आज रात को सांसदों को खरीदा जाएगा, और इसलिए 15 करोड़ का एडवांस जो है वो देने के लिए सांसदों को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है। उन्होंने आंकड़ा भी डाला है कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं, 15 करोड़ में सांसद खरीदी का काम जो है वो चल रहा है और ये घिनौना है, ऐसा उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है। दोनों ग्रुप जो है वह अभी दिल्ली में है, एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटने वाले हैं वो भी अभी दिल्ली में आए हैं, और कुछ सांसद जो है वो अभी भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो भरोसे के सांसद है अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये दोनों और संजय राउत, ये तीनों दिल्ली में सुबह से ही आए हैं, क्योंकि अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है और अरविंद सावंत ये ग्रुप लीडर है, तो कोई भी अगर एक्शन लेनी है तो इन दोनों को ही एक्शन लेनी होगी। कोई भी कॉग्निजेंस अगर रजिस्टर करना है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इन दोनों को ही करनी है, और इन दोनों ने ही आज दिन भर जो सांसद नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी सभी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई ऐसे दिख रहा है। और आज रात की फ्लाइट से ये सभी सांसद 6 सांसद यहाँ पे आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट की कगार पे खड़ी है, देखना होगा कल का दिन, ये महत्वपूर्ण होगा उद्धव ठाकरे के लिए। और खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे आज रात को आने वाले हैं और जो बागी सांसद है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, और फिर ग्रुप लीडर जो है वो तय किया जाएगा, व्हिप तय किया जाएगा, और जो प्रोसीजर है वो कल पूरी की जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20 तारीख से पहले ये पूरी प्रोसीजर जो है वो खत्म होगी, तो इसलिए कल का दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए भी।
1: एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंसाइटफुल डिटेल कमिंग इन माई कॉलीग, थैंक यू सो मच राम शिंदे फॉर गिविंग अस। राम शिंदे वॉज इन्फॉर्मिंग अस दैट टुनाइट इज अ वेरी की नाइट, 15 करोड़ इज द प्राइस दैट इज बींग ऑफर्ड फ्रॉम शिंदे सेना टू UBT MLAs, एंड दीज MPs are flying tonight to Delhi where a meeting will be held with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, in whose party these disgruntled netas from Uddhav's faction will be coming in. So important details there being highlighted of how Operation Tiger is being played out in Maharashtra. To tell you more about this in detail, the Maharashtra politics is buzz with this Operation Tiger. What is this Operation Tiger? This is the Uddhav Sena symbol after which this whole ruckus has been created about how people are unhappy in UBT and they want to switch sides. Now Maharashtra, now Shinde Sena leader has made a big claim saying that at least 7 Uddhav Sena MPs are willing to join Shinde faction before the monsoon session. The statement comes amid increased political activity and back-channel discussions in the state. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde evaded any question on Operation Tiger, maintaining silence on the political controversy surrounding the issue. Uddhav Thackeray has summoned party MLAs on June 22nd amid Operation Tiger buzz. Shiv Sena UBT is likely to discuss party strategy and future political course with them. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session sees a major political shake-up in Maharashtra. How many MLAs, MPs will stay with Uddhav and how many will jump ship to Shinde Sena? Sample the reactions.
2: टाइगर चल रहा है, एक बाइट कर रहे हैं, 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक।
3: उसका मतलब है कि वो लोग हमको टाइगर समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं, और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है। कोशिश तो करेंगे, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है, पार्टियां तोड़ो, पार्टियां तोड़ो, यही काम चल रहा है उनका।
4: संकट नहीं है,
3: संकट नहीं है। अगर संकट आता है तो संकट को

0: Temporary ban on Telegram in a move to curb paper leak ahead of NEET examination. Center has also instructed platforms to disable its message editing feature in India until June 30th. NTA says measures aimed at preventing organized cheating networks. Israeli envoy speaks to NDTV, raises concern over US-Iran deal, says ceasefire and reopening of the Strait of Hormuz are not enough to resolve deeper security risks for Israel. Starting off with some breaking inputs coming in from Maharashtra, where as per sources, some of Uddhav's MPs, their phones are switched off. Uddhav Thackeray is personally trying to persuade the disgruntled netas. But so far, Uddhav's MPs are in incommunicado and they are unable to reach them. Some MPs are also heading towards Delhi, which remains a big concern for Uddhav Thackeray. My colleague Ram Shinde is with me for more details. Ram Shinde, please do tell us about what more are you picking up from your sources?
1: बिल्कुल, जो बंगाल में टीएमसी के साथ हुआ वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हो रहा है. उद्धव ठाकरे के 6 जो सांसद है वो अभी नॉट रीचेबल है, वो दिल्ली आ रहे हैं ऐसे पता चला है, और कल वो अपनी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद जो संसद का ग्रुप लीडर है वो तय करेंगे और व्हिप भी तय करेंगे, और उसके बाद ये लेटर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मीटिंग करेंगे और उनको ये जो लेटर है वो देंगे, ऐसा भी जानकारी पता चल रही है. लेकिन अभी जो ताज़ी खबर है जो कि संजय राउत ने अभी ट्वीट किया है, और ट्वीट करके ये बताया गया है कि सांसदों को खरीदने का काम शुरू हुआ है और आज रात को सांसदों को खरीदा जाएगा, और इसलिए 15 करोड़ का एडवांस जो है वो देने के लिए सांसदों को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है. उन्होंने आंकड़ा भी डाला है कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं. 15 करोड़ में सांसद खरीदी का काम जो है वो चल रहा है और ये घिनौना है, ऐसा उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है. दोनों ग्रुप जो है वह अभी दिल्ली में है. एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटने वाले हैं वो भी अभी दिल्ली में आए हैं, और कुछ सांसद जो है वो अभी भी आ रहे हैं. और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो भरोसे के सांसद है अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये दोनों और संजय राउत, ये तीनों दिल्ली में सुबह से ही आए हैं, क्योंकि अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है और अरविंद सावंत ये ग्रुप लीडर है. तो कोई भी अगर एक्शन लेनी है तो इन दोनों को ही एक्शन लेनी होगी. कोई भी कॉग्निजेंस अगर रजिस्टर करना है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इन दोनों को ही करनी है, और इन दोनों ने ही आज दिन भर जो सांसद नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी सभी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई ऐसे दिख रहा है. और आज रात की फ्लाइट से ये सभी सांसद 6 सांसद यहाँ पे आ रहे हैं. अब उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट की कगार पे खड़ी है. देखना होगा कल का दिन, ये महत्वपूर्ण होगा उद्धव ठाकरे के लिए. और खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे आज रात को आने वाले हैं और जो बागी सांसद है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, और फिर ग्रुप लीडर जो है वो तय किया जाएगा, व्हिप तय किया जाएगा, और जो प्रोसीजर है वो कल पूरी की जाएगी. तो इसका मतलब है कि 20 तारीख से पहले ये पूरी प्रोसीजर जो है वो खत्म होगी. तो इसलिए कल का दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए भी.
0: एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंसाइटफुल डिटेल कमिंग इन माय कॉलीग. थैंक यू सो मच राम शिंदे फॉर गिविंग अस. राम शिंदे वाज इन्फॉर्मिंग अस दैट टुनाइट इज अ वेरी की नाइट. 15 करोड़ इज द प्राइस दैट इज बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम शिंदे सेना टू यूबीटी एमएलएज, एंड दीज MPs are flying tonight to Delhi, where a meeting will be held with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, in whose party these disgruntled netas from Uddhav's faction will be coming in. So important details there being highlighted of how Operation Tiger is being played out in Maharashtra. To tell you more about this in detail, the Maharashtra politics is buzz with this Operation Tiger. What is this Operation Tiger? This is the Uddhav Sena symbol, after which this whole ruckus has been created about how people are unhappy in UBT and they want to switch sides. Now, Maharashtra, Shinde Sena leader has made a big claim saying that at least 7 Uddhav Sena MPs are willing to join Shinde faction before the monsoon session. The statement comes amid increased political activity and back channel discussions in the state. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capital.
3: Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Aditi Bhardwaj and let's take a look at the top stories that we are tracking here at this hour. Prime Minister Narendra Modi, welcomed by French President Emmanuel Macron. He attended the G7 powerful summit that took place. This powerful photograph has become one of the most important pictures in the history, where it represents and reflects India's growing dominance. Prime Minister Narendra Modi and Donald Trump handshake becomes the visual of the moment. Bilateral meetings include a Trump-Modi discussion. They are expected tomorrow. Operation Tiger in Maharashtra is underway. Shinde Sena leader's big claim says 7 Uddhav Thackeray MPs will join Shinde Sena before monsoon session. Says talks are in final stage. Temporary ban on Telegram in a move to curb paper leak ahead of NEET examination. Center has also instructed platforms to disable its message editing feature in India until June 30th. NTA says measures aimed at preventing organized cheating networks. Israeli envoy speaks to NDTV, raises concern over US-Iran deal, says ceasefire and reopening of the Strait of Hormuz are not enough to resolve deeper security risks for Israel. Starting off with some breaking inputs coming in from Maharashtra, where as per sources, some of Uddhav's MPs, their phones are switched off. Uddhav Thackeray is personally trying to persuade the disgruntled netas. But so far, Uddhav's MPs are in incommunicado and they are unable to reach them. Some MPs are also heading towards Delhi, which remains a big concern for Uddhav Thackeray. My colleague Ram Shinde is with me for more details. Ram Shinde, please do tell us about what more are you picking up from your sources?
4: बिल्कुल, जो बंगाल में टीएमसी के साथ हुआ वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हो रहा है. उद्धव ठाकरे के 6 जो सांसद है वो अभी नॉट रीचेबल है, वो दिल्ली आ रहे हैं ऐसे पता चला है और कल वो अपनी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद जो संसद का ग्रुप लीडर है वो तय करेंगे और व्हिप भी तय करेंगे और उसके बाद ये लेटर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मीटिंग करेंगे और उनको ये जो लेटर है वो देंगे, ऐसा भी जानकारी पता चल रही है. लेकिन अभी जो ताज़ी खबर है जो कि संजय राउत ने अभी ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये बताया गया है कि सांसदों को खरीदने का काम शुरू हुआ है और आज रात को सांसदों को खरीदा जाएगा और इसलिए 15 करोड़ का एडवांस जो है वो देने के लिए सांसदों को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है. उन्होंने आंकड़ा भी डाला है कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं. 15 करोड़ में सांसद खरीदी का काम जो है वो चल रहा है और ये घिनौना है, ऐसा उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है. दोनों ग्रुप जो है वो अभी दिल्ली में है. एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटने वाले हैं वो भी अभी दिल्ली में आए हैं और कुछ सांसद जो है वो अभी भी आ रहे हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो भरोसे के सांसद है अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये दोनों और संजय राउत, ये तीनों दिल्ली में सुबह से ही आए हैं क्योंकि अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है और अरविंद सावंत ये

0: ग्रुप लीडर है, तो कोई भी अगर एक्शन लेनी है तो इन दोनों को ही एक्शन लेनी होगी। कोई भी कॉग्निजेंस अगर रजिस्टर करना है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इन दोनों को ही करनी है। और इन दोनों ने ही आज दिन भर जो सांसद नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी सभी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई ऐसे दिख रहा है। और आज रात की फ्लाइट से ये सभी सांसद, 6 सांसद यहाँ पे आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट की कगार पे खड़ी है। देखना होगा कल का दिन, ये महत्वपूर्ण होगा उद्धव ठाकरे के लिए। और खबर ये भी है कि एक नाथ शिंदे आज रात को आने वाले हैं और जो बागी सांसद है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, और फिर ग्रुप लीडर जो है वो तय किया जाएगा, व्हिप तय किया जाएगा, और जो प्रोसीजर है वो कल पूरी की जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20 तारीख से पहले ये पूरी प्रोसीजर जो है वो खत्म होगी। तो इसलिए कल का दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए भी।
1: एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनसाइटफुल डिटेल कमिंग इन माय कॉलीग, थैंक यू सो मच राम शिंदे फॉर गिविंग अस। राम शिंदे वाज इन्फॉर्मिंग अस दैट टुनाइट इज अ वेरी की नाइट, 15 crore इज द प्राइस दैट इज बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम शिंदे सेना टू UBT MLAs, एंड दीज MPs are flying tonight to Delhi where a meeting will be held with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, in whose party these disgruntled netas from Uddhav's faction will be coming in. So important details there being highlighted of how Operation Tiger is being played out in Maharashtra. To tell you more about this in detail, the Maharashtra politics is buzz with this Operation Tiger. What is this Operation Tiger? This is the Uddhav Sena symbol after which this whole ruckus has been created about how people are unhappy in UBT and they want to switch sides. Now Maharashtra, Shinde Sena leader has made a big claim saying that at least 7 Uddhav Sena MPs are willing to join Shinde faction before the monsoon session. The statement comes amid increased political activity and back-channel discussions in the state. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde evaded any question on Operation Tiger, maintaining silence on the political controversy surrounding the issue. Uddhav Thackeray has summoned party MLAs on June 22nd amid Operation Tiger buzz. Shiv Sena UBT is likely to discuss party strategy and future political course with them. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session sees a major political shake-up in Maharashtra. How many MLAs, MPs will stay with Uddhav and how many will jump ship to Shinde Sena? Sample the reactions.
2: टाइगर चल रहा है, शिंदे सर 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक।
3: इसका मतलब है कि वो लोग टाइगर समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं, और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है। कोशिश तो करेंगे, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है। पार्टियां तोड़ो लोगों से नहीं, यही काम चल रहा होता
4: है। संकट नहीं है,
3: संकट नहीं है। अगर संकट आता है तो संकट को निपटा लेंगे।
4: ऑपरेशन टाइगर की जो खबर आ रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
5: ऐसा कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है। ये बात ज़रूर है कि मीडिया में साल डेढ़ साल से ये बातें इंटरमीडियंटली आते रहती हैं और उसको उसकाया जाता है, उसको लाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सीरीज ऑफ मीटिंग्स इन द लास्ट 1.5 years हैव बीन कंडक्टेड बाय उद्धव जी, कन्वीन बाय उद्धव जी, एंड एवरीवन अटेंडेड इन द लास्ट मीटिंग। 4 ऑफ अस वेयर देयर इन पर्सन। After that, 5 of them were there. They were on video conferencing. They couldn't come to Madhusri in Mumbai because they had their individual engagements which were fixed much earlier. So they played और वो integrity जो pledge करना है वो बार बार कितनी बार करेंगे वो।
1: Breaking news coming in, and this is in regards to Prime Minister Narendra Modi's statement at G7. He raised the seafarers' safety issue at G7. This comes after an attack on the Indian vessel where three Indians were killed on board a ship in the Strait of Hormuz when a US strike decimated that ship. These are the visuals of that ship which was destroyed.

0: वो अभी नॉट रिचेबल है, वो दिल्ली आ रहे हैं ऐसे पता चला है, और कल वो अपनी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद जो संसद का ग्रुप लीडर है वो तय करेंगे और व्हिप भी तय करेंगे, और उसके बाद ये लेटर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मीटिंग करेंगे और उनको ये जो लेटर है वो देंगे, ऐसा भी जानकारी पता चल रही है। लेकिन अभी जो ताज़ी खबर है जो कि संजय राउत ने अभी ट्वीट किया है, और ट्वीट करके ये बताया गया है कि सांसदों को खरीदने का काम शुरू हुआ है और आज रात को सांसदों को खरीदा जाएगा, और इसलिए 15 करोड़ का एडवांस जो है वो देने के लिए सांसदों को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है। उन्होंने आंकड़ा भी डाला है कि कितने करोड़ दिए जा रहे हैं, 15 करोड़ में सांसद खरीदी का काम जो है वो चल रहा है और ये घिनौना है, ऐसा उन्होंने अभी ट्वीट भी किया है। दोनों ग्रुप जो है वह अभी दिल्ली में है, एक तरफ से उद्धव ठाकरे के जो 6 सांसद टूटने वाले है वो भी अभी दिल्ली में आए हैं, और कुछ सांसद जो है वो अभी भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जो भरोसे के सांसद है अनिल देसाई, अरविंद सावंत, ये दोनों और संजय राउत, ये तीनों दिल्ली में सुबह से ही आए हैं, क्योंकि अनिल देसाई ये चीफ व्हिप है और अरविंद सावंत ये ग्रुप लीडर है, तो कोई भी अगर एक्शन लेनी है तो इन दोनों को ही एक्शन लेनी होगी। कोई भी कॉग्निजेंस अगर रजिस्टर करना है या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इन दोनों को ही करनी है, और इन दोनों ने ही आज दिन भर जो सांसद नाराज थे उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी सभी कोशिशें जो है वो नाकाम हुई ऐसे दिख रहा है। और आज रात की फ्लाइट से ये सभी सांसद 6 सांसद यहाँ पे आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी बार टूट की कगार पे खड़ी है, देखना होगा कल का दिन, ये महत्वपूर्ण होगा उद्धव ठाकरे के लिए। और खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे आज रात को आने वाले हैं और जो बागी सांसद है उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, और फिर ग्रुप लीडर जो है वो तय किया जाएगा, व्हिप तय किया जाएगा, और जो प्रोसीजर है वो कल पूरी की जाएगी। तो इसका मतलब है कि 20 तारीख से पहले ये पूरी प्रोसीजर जो है वो खत्म होगी, तो इसलिए कल का दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए भी।
1: एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनसाइटफुल डिटेल कमिंग इन माय कॉलीग, थैंक यू सो मच राम शिंदे फॉर गिविंग अस। राम शिंदे वाज इन्फॉर्मिंग अस दैट टुनाइट इज अ वेरी की नाइट, 15 करोड़ इज द प्राइस दैट इज बीइंग ऑफर्ड फ्रॉम शिंदे सेना टू यूबीटी एमएलएज, एंड दीज MPs are flying tonight to Delhi where a meeting will be held with the Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde, in whose party these disgruntled netas from Uddhav's faction will be coming in. So important details there being highlighted of how Operation Tiger is being played out in Maharashtra. To tell you more about this in detail, the Maharashtra politics is buzz with this Operation Tiger. What is this Operation Tiger? This is the Uddhav Sena symbol after which this whole ruckus has been created about how people are unhappy in UBT and they want to switch sides. Now Maharashtra, now Shinde Sena leader has made a big claim saying that at least 7 Uddhav Sena MPs are willing to join Shinde faction before the monsoon session. The statement comes amid increased political activity and back channel discussions in the state. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde evaded any question on Operation Tiger, maintaining silence on the political controversy surrounding the issue. Uddhav Thackeray has summoned party MLAs on June 22nd amid Operation Tiger buzz. Shiv Sena UBT is likely to discuss party strategy and future political course with them. With both sides making strong claims, all eyes are now on whether the monsoon session sees a major political shake-up in Maharashtra. How many MLAs, MPs will stay with Uddhav and how many will jump ship to Shinde Sena? Sample the reactions.
2: टाइगर चल रहा है, शिंदे सर, 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में दिल्ली से लेके महाराष्ट्र तक।
3: उसका मतलब है कि वो लोग टाइगर समझते हैं ना कि हम टाइगर हैं, और टाइगर का ऑपरेशन आसान नहीं होता है। कोशिश तो करेंगे, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, देश कल्याण का काम नहीं है, जनता के कल्याण का काम नहीं है, पार्टियां तोड़ो यही काम चल रहा होता
4: है। संकट नहीं है,
3: संकट नहीं है, अगर संकट आता है तो संकट को निपटा लेंगे।
5: ऑपरेशन टाइगर की जो खबर आ रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
6: ऐसा कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है। ये बात ज़रूर है कि मीडिया में साल डेढ़ साल से ये बातें इंटरमीडियंटली आते रहती हैं और उसको उसकाया जाता है, उसको लाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सीरीज ऑफ मीटिंग्स इन द लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स आई बीन कंडक्टेड बाय उद्धव जी, कन्वीन बाय उद्धव जी एंड एवरीवन अटेंडेड इन द लास्ट मीटिंग। फोर ऑफ अस वेयर देयर इन पर्सन, after that five of them were there, they were on video conferencing. They couldn't come to Madhusri in Mumbai because they had their individual engagements which were fixed much earlier. So they yeah, and aur wo integrity jo pledge karna hai wo baar baar kitni baar karenge.
1: Breaking news coming in, and this is in regards to Prime Minister Narendra Modi's statement at G7. He raised the seafarers' safety issue at G7. This comes after an attack on the Indian vessel where three Indians were killed on board a ship in the Strait of Hormuz when a U.S. strike decimated that ship. These are the visuals of that ship which was destroyed, after which three Indians were killed. And now Prime Minister Narendra Modi reiterating how it is important to ensure safety of seafarers amid these tumultuous times. The Strait of Hormuz must be safe. This is what is being urged by Narendra Modi. Remember, this was when Donald Trump, the US president, was sitting right in front of Narendra Modi when the two discussed it. And before also the G7 working sessions began, Donald Trump did a handshake with Narendra Modi, and the two were seen discussing something for a very brief time, after which this statement is of utmost importance of how India is putting forward its stand without any concern about the geopolitical tensions that are simmering in the area. My colleague Aditya Raj Kaul is also with me to detail and highlight the nuances of this statement coming in from Prime Minister Narendra Modi and the timing of it. Yes, Aditya.
7: Well, yes, it's a very significant statement coming in from Prime Minister Narendra Modi, and this was his speech at one of the sessions in G7 when all the G7 members were sitting there, including the US President Donald Trump. Prime Minister Modi raising the issue of the safety and security of the seafarers who are traveling across the Strait of Hormuz amid the geopolitical tension in the region over the last 3.5 months. And this comes just days after three Indian nationals were killed in that attack by the US Navy on a commercial vessel in that entire area. Remember, India had also summoned twice in 48 hours top US diplomat Jason Meeks, clearly highlighting and protesting this development. Three innocent lives were lost from India in that attack. And now Prime Minister Narendra Modi saying that the world needs to ensure the safety and security of seafarers in that region. He welcomed the West Asia peace deal that has been achieved and will be signed on Friday, the 19th of June, but also highlighted how the blockage of the Strait of Hormuz and the West Asia crisis has led to an economic turbulence affecting each and every country, and prayed that there is sustained dialogue so that there is peace that returns. So Prime Minister Narendra Modi of India highlighting at the highest level the issue of the seafarers, which is of utmost importance. There's been a lot of anger, Aditi, across India when these three innocent lives were lost. And of course, speaking to NDTV, father of one of the victims, Aditya Sharma, had also called it a war crime and demanded fair and independent investigation so that the guilty are in fact booked. So an important, significant diplomatic statement coming in from Prime Minister Modi, mincing no words and clearly indicating that there needs to be safety of seafarers and free navigation across the Strait of Hormuz.
1: Absolutely. And Aditya, if I'm not wrong, Aditya Sharma's father said that it is a war crime what Trump has done. And we hope that this war, which has now come to a deal, will last long. Thank you so much, Aditya, for sharing us. Breaking inputs coming in even further, with India now banning Telegram app till re-NEET examination is completed. Telegram CEO is criticizing the move, saying that the leaks just moved to other platforms and this will only punish the 150 million plus users India has of Telegram. Remember, Telegram has been temporarily banned in India as authorities move to prevent cheating and misinformation ahead of the NEET UG 2026 re-examination. My colleague Tanushka, who has been tracking this, is joining me. Tanushka, you know, keeping the statement of Telegram CEO aside, do you think this is beneficial?
8: Right, Agri.